मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना लेही, शेष रसन सारस सी बुद्ध, तदप न उपमा बरनत सुध, शेष रसन सारस सी बुद्ध।

कि मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथिया पाखी पार ब्रह्म।

महबूबे गरीबा तके गाहिबे सन माणे ते मान तान ते तान तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे अंदर मिल बैठे गुरु साहिब सिंह जो आप जी शोधो दी चौं तुम उपरंत पंथ दिया दो सौ प्रसिद्ध हस्तियां गुरु आप जी ने सब गुरपीरा जी दे नाल जोड़िया है नारी आदि संगीत दे नाल जोड़िया है भाई साहब जी भाई अमरीक सिंह जी जख्मी शाम जी ने आप जी ने बहुत सुंदर अंदाज के नाल थोड़े समय में बहुत कुछ आख्या है दासों प्रति भी बहुत कुछ कह दिता दास इस गल के योग नहीं हम रुलते फिरत को बाद में पूछता दासों को हुआ कि ज्यादा तो ज्यादा दसम पातशाह जी की बाणी का गायन किया जाए दास पहला शब्द मेल करो तिन तेम हो जाए गरीब नवाज नदू सुरतोसो पूल सिमो अमरी प्रभापन पूलन हार कहां को मोसो दस मात्र की बंदशाह जी जो बुलावे तो बोलो स्वामी आप जी अजाज बख्शो जी फतेह बाबा आप जी मकूल फतेह बख्शो से कुछ इतन कृतन अजाज बख्शो वाहे गुरु जी का खालसा।

सिंह जी, जल्दी जल्दी इस शब्द गायन करना सी, मेल गुरु तिन तिन मोह जाए, जिहड़ी जबान दी उस तरह गा लिया। दूसरा शब्द है जी, प्राण के बतैया

छत्री को पूत हां चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है तै तप आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा जितता मैं धरो और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा चितता मैं धरो अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो जब आपकी आग निदान बने।

शिवा पर मोह गया है। शब तन मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह गया है। शब तन मन से कब हूं न करो न डरो अरशो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरशो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो अरशे खाओ अपने ही मन गोए लाल दिहाओ गुटाओ जुड़ा अरशे खाओ अपने ही मन को ए लाल दिहाओ

अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना मेरा तो नाम गोविंद सिंह है।

गुरमुख जन्म सवार दरगे भलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मलिया जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका सदे उठी जा गुरमुख सदे जान आवन कल्ले गुरमुख सदे जान।

मित्रो गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे साफ फरमाते जे जे तुमरे ध्यान नित उठ जाए है संत जे जे तुमरे ध्यान का नित उठ जाए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नानक तिस जन को सदा नमस्कार नित जपिए सा

सब अजमेरी है। जब लवनी भाग लीलार उठे तब लव भरते फिरते बहुत आयो, कल खोर समुद्र में मूर्द थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो। तत्व विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ। अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है, और ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा। तो प्यार न सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव। गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार, पातशाह हुक्म करो। हलम कर लगे गंगा जी, फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया, और कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए। अब गुरु की संगता की सेवा करनी है, अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी, अज गुरु की संगतों वास्ते आप चक्की थी। आटा तैयार किया, फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई, उत्ते चिट्टा रुमाल पाया। माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए। हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे। तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी ने अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी, तुरन लगे। माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है। हजूर कह लगे गंगा जी जे संतों की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर कर। जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास, तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली। हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी। तुरिया जाता है अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस। गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो। नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते, पर समुद्र कदे नहीं मिलता। समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है, जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस। गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज, भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे, ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया, पर फिर भी गुरु की संगतों प्यार किस तरह अरदास कर। गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी, माता गंगा के कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है। तेरी सारी संगत रात का समय प्यार जी है ते अरदास कर रही है। मेरा

मेरी सास कितनी प्यार वाली थी, प्यासी गुरु ने दर्शना दी नाथ पी मिली, आप भी ना देना दिन की पड़ी की पता ये अज ना दिया लोग पूरिया हो जाए अगर कोई बक्ति कोई वही गल तो प्यार ना पहले सेव।

से प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चातक की जान कृपा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो औी जियो गुरु कुमारी गुरु दर्शन मैं चंगा जी कहता एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कला प्रशादी देगी जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत नु सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन को प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कला प्रसाद जी दे जा रही है उठो पहले अरदास करो सिख में जो भी गुरु अरदास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य नहीं गुरु की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद मसा सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद जी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अदू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज सी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कला प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी चला साहबा के सोहने हथां जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें जपया श्री वाह जल चुकाया जूठे भांडे कौन मांग रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सके भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार करके कर दे

कुर्बान जाइए मुझसे खा दी तू सदगुरु आप समझे जिनके चौदह रसड़े प्यारे कल तिना के पास तोड़ तिना की से मिले जी कौ नानक की बाबा बुढ़ा जी पहुंच गए जाके साहबा जी रस्तों जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूप करने वाले पत्ता पावन करने वाले तुम्हें

चलने अर्शो संगन देहा। राजलीला राजन की रचना करिया हुकम अपारा, सृज सवन चंदन शोभा नाक कोर का द्वारा। हर तीर

0: গোপী পাঞ্জন হর হর কীর্তন দেহ মন রাতা
1: बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये जो आप जी नूं मैं श्रवण करवा रहा अज उस दिन असी गुरमुख प्यारे सरदार जगजीवन सिंह जी सानू नाल लैके गए और सब लोगों नूं वेख के जिहड़े धर्म का इजहार कर रहे सन अपने अपने तरीके नाल और मैं भी उन्हां च क्या भाई दुनिया विच काफी लोग हैं जिहड़े बिल्कुल किसी गल नूं मनदे नहीं और जिहड़े तुसी मनण वाले हो उही साडा परिवार है भावें तुसी किहड़े धर्म तों बिलोंग करदे हो। उसे तरह ही तुसी गुरु के प्यार वाले सिख जिहड़े आ गुरु नूं अपनी हाजरी लवांदे हो और मेरे कीर्तनीय वीर मेरे सामने बैठे हुए हैं गुरु कृपा करे इन्हां नूं चढ़दियां कला बख्शे। इस तरह ही गुरु घर का संदेश दूर दूर तक पहुंचाते रहन। श्रवण करो ये पानमती ये मत ताल है ये पानमती ताल है और गुजरी कबीर साहब की गुजरी राग भी गुजरी है और आप गुजरी सुनो गुजरी विच ही श्रवण करो इसनों और इस जो इसका ताल है वह 11 मात्र है पानमती ताल।

अमै दृष्ट शुभ कर, अमै दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सब बल, सदा सुख मन बस है दुख संसार है खोवे, गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे, गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे, सो कहो टल गुर सेविया, टल पाठ जी कहते ने सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जा, चरना ते टैपिया जीवन पहला ता ना दा जीवन से हुन अंदरों जी उठिया, कई बंदे ना दे चंगे हुंदे ने मेरे वर्गे अंदरों ऐड़ा ही लगदा है उना दे ना नाल, धर्म सिंह अधर्म अंदरले अधर्मी बाहरले धर्मी, बाहरले सज्जन अंदरले कुसज्जन, बाहरों जेब औरंगजेब ते अंदरों फरेब, जीवन ना दा जीवन काया दा जीवन, अंदरों जी उठिया क्योंकि जी दान दे भगती लायन हरस्यों लैन मलाए, गुरु नानक देव जी दे चरणा दी छो भी होई ते नेत्रा राही एदे अंदर एक जीवन भी इंस्पिरेशन, जीवन दी इंस्पिरेशन भी मिल गई। तो सत्संग जी दासना इत्थो चलिया सी कि किसे साधारण किता करन वाले ने ना गाली कड्डी ना टंगो पकड़ घसीटिया ते ना ठुड्डा मारिया, ओ बड़ा धार्मिक बंदा सी। कई बारी पिंडा विच रहन करके एक तजर्बा होया है दास नूं, तुसां तां चोखे देर दे इधर आ गए हो पर पहले बंदियां नूं पता होवे, जिमीदार बड़ियां खेचलां करके मुशक्कतां करके अद्धी अद्धी राती उठ के कंडियां दे सिर ते सप्पां दे सिर मधोल मधोल के खेत नूं बीजण ते करदा है, बांहदा है, सुहागे देंदा है, धरती बनांदा है, जदों मैदे वर्गी हो जाए हुण कल नूं इहने बीज पाउणा है, इन्हें धरती नूं बोना है, लेकिन कुदरत दे रंग राती बदल चढ़िया मोले तार मीह वस गया, इहदी सारी मेहनत होर पिछे पै गई ते मीह वसिया बीजण ते कीती हुई धरती सख्त हो गई, कड़वी हो गई, बहुत सख्त हो गई, हाले मेहनत होर दरकार सी। एन कई बारी सुखमनी साहिब पढ़दे हां, गुरबाणी दा कीर्तन करदे हां, होर नितनेम आदर करदे हां, गुरु साहिब जी दे आशे नूं हिम्मत नाल सूझबूझ नाल आले दुआले दी सोबत ते कुरब दे असर नाल निभांदियां निभांदियां मन बीजण ते होया हुंदा है, ते जदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार या शब्द स्पर्श रूप रस गंध दी बारिश ही नहीं पैंदी, गड़े मार भी हो जांदी, धरती सख्त हो जांदी। जीवन दी गल बन चली सी क्योंकि बाबा नानक उथे पहुंच चुके सन, लेकिन होमे दी ऐसी बारिश होई कि इहदा मन फिर करड़ा हो गया। इस तरह धर्म दी कई वारी जड़ी हंगता हुंदी है, बड़ी लतीफ हुंदी है, बड़ी महीन हुंदी है, बड़ी फाइन हुंदी है, ते इहनूं डॉक्टर भी कोई बाबे नानक वर्गा ही दूर करे ता करे, हर किसे दा कम नहीं होया करदा। इहो धार्मिक बंदियां नूं भी कई वारी रोग ते जरासीम चुमट जांदे ने, बाबे नानक ने उहदा उद्धार कीता, ओदे बदौलत कई होर नानू भी यह पता लगा कि खुदा एक जगह नहीं है, खुदा हाजर बबद दाएं बबी दीदार पाकिशरा, न गिरदावे दरो हायल न दरियाओ न साहला, चिरा बेहूदा में गर्दी बसहराओ बदश तै दिल, चुआ सुल्तान खूबा करदा अंदर दीदा मंजल हा। भाई नंद लाल साहब जी गोया गुरु गोबिंद सिंह जी दे मकबूल तरीन सिख कहंदे ने, ते इसलिए गुण गाउन नाल परमेश्वर दा जस गाउन नाल परमेश्वर नूं ना कोई फायदा हुंदा है ते ना गाउन नाल ना कुछ ओहदा कटदा है। ठंड लगदी है, सूरज चमक रहा है, धुप विच बह जाओ ता सूरज दा कुछ वधदा नहीं, ते जे ना बैठो ता ओहदा कटदा कुछ नहीं। कुर्रा हवाई चल रहा है, इह तों फायदा उठा लो ता इहदा कुछ वधिया नहीं, ते जे हुस्सड़ विच बैठ के कोई होर रोग लाउणा है ते ओहदा कुछ कटिया। गुरु साहिब जी फरमांदे ने ऐ इंसान हुजता ना कर, तेरे उत्ते परमेश्वर दे तां बेअंत बेअंत एहसानात ने, ते तू उसदे जिन्ने भी गुण गाए ओ थोड़े ने ते बजा ने। बाबे नानक नूं तां एडा चाओ सी सत्संग जी, मोंडी बाबा जी तां एडे चाओ विच आउंदे ने, जपजी साहिब दी 32वीं पौड़ी दा ध्यान करो, दिमाग विच लियाओ, ओहदे विच सतगुरु जी दा चाओ कुछ नजर पैंदा है, हे मेरे मालिक तेरे च एक नहीं अनेकां गुण ने, अनेकां गुणा दे मालिक मैनू चाओ भी कनेरा है।
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੈਬੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇ ਵਸਫ ਨੇ, 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਚਾਉ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਉ, ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀਓ ਤਾਂ ਵੇ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਬੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਮਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਕ ਗਾਵੀਏ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ, ਜ਼ਮਰੂਦਾਂ, ਪੰਨਿਆਂ, ਨੀਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

एकदम तुहाडा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहेगुरु एक थॉट आएगा वाहेगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहेगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते जे असी हर रोज करते।

कोड़िया पही करना जुगला पही तेंदारी है, देखे किता अपना दर्क चिपकी सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है।